All right, guys, welcome back after song one. थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया था, तो पता नहीं कुछ हो गया था. अनाउंसमेंट रीड करते करते मैं कट गया था और सडनली गाना लग गया. तो एनी वेज, आई एम गोना रीड द अनाउंसमेंट अगेन. ओह बाय द वे, जो गाना लगा है इट वॉज अखियां बाय गुरनीत दोसांझ, और ये एक एनोनिमस इंसान ने रिक्वेस्ट किया है. द पर्सन डज नॉट वॉन्ट टू बी नेम्ड, सो वी तो उनकी जो प्राइवेसी है वो हम रिस्पेक्ट करते हैं. एनीवेज, तो ये है जी अनाउंसमेंट नंबर वन. अगेन आई एम गोना से इट, दिस इज अकेडमी फॉर पेरेंट्स ऑफ नॉन चाइनीज स्पीकिंग स्टूडेंट्स प्लेफुल चाइनीज लर्निंग. एजुकेशन ब्यूरो ने कैरिटास हांगकांग को बोला है कि वो अकेडमी फॉर पेरेंट्स ऑफ नॉन चाइनीज स्पीकिंग स्टूडेंट्स के अंडर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करें. ये एक्टिविटीज हांगकांग के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में सैटरडे आफ्टरनून को होती है. अगला इवेंट 20 जून 2026 सैटरडे को सीवान शान में इस्लामिक दरवूद पाओ मेमोरियल प्राइमरी स्कूल में होगा. टाइम है दोपहर 2 बजे से 4:15 बजे तक. इस इवेंट का टॉपिक है प्लेफुल चाइनीज लर्निंग. हम सभी नॉन चाइनीज स्पीकिंग स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं जो किंडरगार्टन में पढ़ते हैं. नॉन चाइनीज स्पीकिंग बच्चों के लिए चाइनीज सीखना आसान नहीं होता, इसलिए फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है ताकि घर पर भी अच्छा लर्निंग एनवायरमेंट बने. इस इवेंट में अर्ली स्टेज में चाइनीज सीखने की इम्पोर्टेंस पर शेयरिंग सेशन होगी और बच्चों को चाइनीज सिखाने के लिए इंटरैक्टिव एक्टिविटीज भी होगी. बच्चे टैलेंट शो में अपने टैलेंट्स भी दिखा सकेंगे और सबसे अच्छी बात, सारी एक्टिविटीज कंप्लीटली फ्री हैं. ज्यादा जानकारी या इनरोलमेंट के लिए कॉल कीजिए 2552-4211 या व्हाट्सएप कीजिए 9862-3150. जरूर आइए और ज्वाइन कीजिए.

All right, I'm gonna play the second song. No, actually, second song से पहले I'm gonna announce the second announcement. उसके बाद हम जाएंगे on the second song. So this is cervical screening. हांगकांग में महिलाओं में सर्विकल कैंसर बहुत कॉमन है. रेगुलर स्क्रीनिंग करवाओ तो इसको बहुत हद तक रोका जा सकता है. अगर आपकी उम्र 25 से 64 साल के बीच है और आपने सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया हो तो रेगुलर सर्विकल स्क्रीनिंग जरूरी जरूर करवाएं. बहुत सी महिलाएं जिनको एचपीवी वायरस है जो सर्विकल कैंसर के कारण का कारण बनता है या कैंसर शुरुआती स्टेज में है उनको कोई लक्षण भी नहीं दिखते. याद रखो चाहे आपको कोई लक्षण ना हो एचपीवी वैक्सीन लगा लो लगा हो या मेनोपॉज हो चुका हो तो तब भी रेगुलर स्क्रीनिंग करवानी बहुत जरूरी है. स्क्रीनिंग करवाने के लिए आप मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स वुमेन वेलनेस सैटेलाइट्स फैमिली डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट या एनजीओ के पास जा सकती हैं. डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में बुकिंग के लिए कॉल कर सकते हैं. नंबर है जी 3166-6631. जनवरी 2026 से वुमेन वेलनेस सैटेलाइट्स में एचपीवी सेल्फ सैंपलिंग की सुविधा भी शुरू हो गई है. इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए इन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए. हांगकांग आइलैंड में है तो 2855-1333, कावलून में है 2855-1222, न्यू टेरिटरीज में है तो 2851-1722. ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट पर जाइए www.cervicalscreening.gov.hk. अपना ख्याल रखो रेगुलर स्क्रीनिंग करवाओ. ओके ऑलराइट सो आवर फर्स्ट नो सेकंड रिक्वेस्टेड सॉन्ग इज बाय हार्वी सिंह और इन्होंने जो गाना रिक्वेस्ट किया है इट्स फ्रॉम दस में की प्यार विचो खटिया. ये यमला जट का रिमिक्स गाना है एंड इट्स फॉर अंकित हरियाणा फ्लाइंग सून नीतू मुन्ना जिमी गैरी एंड सनी. एंजॉय द सॉन्ग.

All right, guys, welcome back. I hope you like the song. बहुत पुराने सिंगर हैं जी यमला जट, और जिन्होंने भी ये म्यूजिक रिकम्पोज किया है, have to give it to them. Anyways, बढ़ते हैं जी अगले अनाउंसमेंट पर. दिस इज रिसीव कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग. आज ही कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लो. हांगकांग में आंतर का कैंसर बहुत कॉमन कैंसर्स में से एक है. रेगुलर स्क्रीनिंग करवाओ तो इसको जल्दी पकड़ा जा सकता है और रिस्क काफ़ी कम हो जाता है. साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपनाओ. शुरुआती स्टेज में इस कैंसर का के कोई लक्षण नहीं दिखते.

0: इसलिए स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। 50 से 75 साल के हांगकांग रेसिडेंट्स जो अभी कोई सिम्टम्स नहीं फील कर रहे, उनके लिए ये स्क्रीनिंग फ्री हो सकती है। अगर रिजल्ट नॉर्मल आए तो हर 2 साल बाद फिर स्क्रीनिंग जरूर करवाओ। ज्यादा जानकारी के लिए colonscreen.gov.hk पर जाओ। हेल्दी रहने के लिए रोज एक्सरसाइज करो, दिन में 2 बार फ्रूट और 3 बार सब्जी खाओ, अपना वेट हेल्दी रखो, स्मोकिंग और शराब छोड़ दो, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो, आज ही स्क्रीनिंग करवाओ। ऑलराइट, द नेक्स्ट सॉन्ग इज रिक्वेस्टेड बाय गैरी संधू एंड गाने का नाम है जी जुत्ती बाय लव हीरा, डेडिकेटेड टू चाचा अमरीका, पंकज अफनान पठान एंड टू ऑल माय ब्रदर्स हु आर लिसनिंग राइट नाउ। एंजॉय द सॉन्ग गाइस।
1: लावी मित्रों, मैं तो अपना प्रॉफिट डायमंड जानी लाभ हीरा, मेरे नाल मेरा छोटा वीर इंद्रवीर सिद्धू,

Primary one, okay. Coming up to our next announcement. Primary one central allocation results to be posted to parents on June 3rd and June 4th. Primary one admission 2026 के central allocation के results 3 और 4 June को parents को post से भेजे जाएंगे. जिन्होंने जनवरी 25 तक choice of schools form submit किया था, उनको Hong Kong post के local courier post service से primary one registration form मिलेगा. लेटर घर के डोर पर डिलीवर किया जाएगा. अगर डोर डिलीवरी ना हो पाए तो पोस्ट ऑफिस एक मेल कलेक्शन नोटिफिकेशन कार्ड छोड़ जाएगा. उसके बाद अगले वर्किंग डे के आफ्टरनून से आप डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस से लेटर ले सकते हो. अगर 5 जून तक आपको लेटर या नोटिफिकेशन कार्ड ना मिले तो 6 और 7 जून को डेजिग्नेटेड कलेक्शन सेंटर से प्राइमरी वन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कलेक्ट कर सकते हो. जो पेरेंट्स प्राइमरी वन एडमिशन ई प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं और अपना अकाउंट आई एम स्मार्ट या आई एम स्मार्ट प्लस से लिंक किया है, वो 3 जून को ऑनलाइन रिजल्ट्स देख सकते हैं. अगर आपने चॉइस ऑफ स्कूल्स फॉर्म में एसएमएस कंसेंट दिया था तो आपको 3 जून को एसएमएस भी आ सकता है. रजिस्ट्रेशन के लिए 9 जून ट्यूसडे या 10 जून वेंसडे को अपने एलोकेटेड स्कूल में जाकर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी. अगर इन डेट्स पर नहीं जा सकते तो स्कूल को पहले से कांटेक्ट करके अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर लो, वरना सीट छोड़ दी गई समझी जाएगी. कोई सवाल हो तो एजुकेशन ब्यूरो के स्कूल प्लेसेस एलोकेशन सेक्शंस पर कॉल कीजिए. नंबर है जी 2832-7700. ऑलराइट, अगला जो गाना है वो है जय संधू ने रिक्वेस्ट किया है.

गाने का नाम है जी डेड जोन, सिंगर है जी गुलाब सिद्धू, डेडिकेटेड टू चाचा अमरीका, पंकज, अफनान पठान एंड टू एवरीवन हु इज लिसनिंग राइट नाउ फ्रॉम जज संधू. चलो जी एंजॉय द सॉन्ग, दिस इज डेड जोन बाय गुलाब सिद्धू.

0: Alright guys, welcome back. आते हैं जी हमारे आखिरी अनाउंसमेंट पर. ये है प्रिवेंशन ऑफ सीजनल इन्फ्लुएंजा, COVID-19 एंड अदर रेस्पिरेटरी इलनेसेस. इस सीजन में अलर्ट रहो, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, COVID-19 और दूसरे सांस की बीमारियां अभी भी चल रही हैं. अपनी सफाई और घर परिवार की हाइजीन का ख्याल रखो. खांसी या छींक आए तो टिश्यू से मुंह और नाक को ढक लो. हाथ को लिक्विड सोप और पानी से कम 20 सेकंड्स तक अच्छे से धो लो. अगर तबीयत खराब लगे तो मास्क पहनो और तुरंत डॉक्टर से मिलो. गवर्नमेंट का 2025 और 26 सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है. हर साल फ्लू का वैक्सीन लगवाओ, जितनी जल्दी उतना बेहतर. एलिजिबल लोगों का को फ्री या सब्सिडाइज्ड फ्लू शॉट मिल सकता है. COVID-19 अभी कम है, लेकिन हाई रिस्क लोगों को बूस्टर वैक्सीन टाइम पर लगवाना चाहिए. रेजिडेंशियल केयर होम्स में रहने वाले 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, 50 से 64 साल के जो क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित हैं, इम्यूनिटी कमजोर लोग 6 महीने से ऊपर, प्रेग्नेंट महिलाएं. ज्यादा जानकारी के लिए सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन की वेबसाइट देखो, www.chp.gov.hk. अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो. ऑलराइट, खत्म हो गए जी हमारे सारे अनाउंसमेंट्स. द नेक्स्ट सॉन्ग इज रिक्वेस्टेड बाय विशाल शर्मा. दिस इज टीसी, सॉन्ग बाय Sung by G. Khan and Gulab Sidhu. Dedicated to Basu Jat, Bilal, Nomi, Tailo. Enjoy the song.
1: मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है. पता चलता है उस अपनी जिंदगी की परवाह है, और जिसे जिंदगी की परवाह होती है, माँ का सम्मान मारने का मजा आता है.

0: Rivers help carry rainwater away. They bring in vitality to communities. And they're inhabited by many different species. While we should admire our rivers, we should also stay alert to changes in the weather. During bad weather, a rainstorm could cause a flash flood, and we should stay away from watercourses. Enjoy river scenery. Beware of flash floods.
1: All right, guys, welcome back. आगे बढ़ने से पहले एक इशू मैं एड्रेस करना चाहता हूँ. यू नो, आप सबको मालूम है, मैंने एक बार नहीं बहुत बार बोला है कि हमारे पास हर हफ्ते बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं. एक टिप देना चाहूंगा आप सबको कि अगर एक इंसान बार बार मैसेज भेजे, बार बार रिक्वेस्ट भेजे ना, तो वो जो लिस्ट है ना, उसका नाम जो है वो लिस्ट पे वो ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर जाता रहता है, क्योंकि उसका वो मैसेज नया होता है. तो आप जितने कम रिक्वेस्ट करोगे उतना बेहतर है. मैं आपको समझाता हूँ कैसे. कि अगर आप एक बार रिक्वेस्ट करोगे ना, तो आपका नाम होगा सबसे नीचे, और वो बेसिकली जो मेरी टीम है वो वहां से देखती है कि भाई सबसे पहले मैसेज किसने डाला है. तो वो जो एक बार बंदे ने, इंसान ने रिक्वेस्ट डाली है, तो उसका नाम सबसे नीचे होगा, तो वो सबसे पहले प्ले हो जाएगा. ठीक है, अगर वो उसके बाद दूसरा, तीसरा, जो भी है, सो एंड सो फोर्थ. लेकिन अगर वो जिसने पहले रिक्वेस्ट डाल दी है, वो बार बार रिक्वेस्ट डाले जाए, बोले जाए कि भाई मेरा गाना प्ले करो, मेरा गाना प्ले करो, तो वो इवेंचुअली उसका जो रिक्वेस्ट है ना, उसका जो नाम है वो ऊपर आ जाएगा, टॉप पर, और वो इग्नोर हो जाता है, क्योंकि हम, जो मेरी टीम जो है,

वो लिस्ट जो है वो नीचे से शुरू करती है, ना कि ऊपर से। सो हम जो मेरी जो टीम है नीचे के, जैसे लाइक से फॉर एग्जांपल 10, 12, 15, 14 जो भी गाने हैं वो नीचे से शुरू करते हैं। तो अगर आपने जैसे आज फ्राइडे है, मंडे को रिक्वेस्ट डाली, फिर वेंसडे को वही बंदे ने जो मंडे को रिक्वेस्ट डाली तो वो नंबर वन हो जाएगा। लेकिन फिर से अगर आपने रिपीट कर दिया कि भाई मेरा नाम डालो, मेरा रिक्वेस्ट डालो वेंसडे या थर्सडे को, तो फिर वो आपका नाम ऊपर आता जाएगा और आप रह जाओगे। तो इसलिए कई लोगों के मैसेजेस रह जाते हैं, कई लोगों के रिक्वेस्ट रह जाते हैं, तो फिर बाद में बोलते हैं कि भाई इट्स नॉट फेयर, मेरा गाना क्यों नहीं लगाया, मैंने रिक्वेस्ट किया था। आपने सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट करना है, बार बार एक चीज़ को रिक्वेस्ट नहीं करनी है, बार बार नहीं बोलना है। वो जैसे मैंने कहा है कि हमारा एक सिस्टम है, मेरी टीम का एक सिस्टम है, एक लिस्ट है, वो नीचे से शुरू करते हैं, पहले नीचे से शुरू करते हैं फिर ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर आते हैं। अगर आप बार बार ही करे जाओगे तो आपका नीचे से नाम ऊपर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एनीवेज 1 घंटे हम जितने गाने लगा सकते हैं वो हम पूरी कोशिश करते लगाने की, ठीक है। एनीवेज मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रिक्वेस्टेड सॉन्ग, दिस सॉन्ग इज रिक्वेस्टेड बाय मैरी नेल। कैन यू प्ले अ सॉन्ग 855 बाय आर नाइथ फॉर ए के एंड सुशांत बट इन तुंग ताओ एंड ऑल हिज फ्रेंड्स प्लीज, थैंक यू। इंजॉय द सॉन्ग, दिस इज 855 855 बार बाय आर नाइथ, इंजॉय।

ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। आते हैं जी अगले रिक्वेस्टेड गाने पर। दिस इज रिक्वेस्टेड बाय लव संधू। मैसेजेस, हेलो ब्रदर, कि मैं ठीक हूँ। एक सॉन्ग प्ले कर दो अर्जुन ढिल्लों का, कल्चर द नेम ऑफ द सॉन्ग। इट्स फॉर अमृत सनी, बाची, मैक्सी, जग्गी एंड ऑल ऑल द ब्रदर्स इन प्रिजन। ओके जी, ये गाना है कल्चर बाय अर्जुन ढिल्लों। इंजॉय द सॉन्ग।

सिकंदर गाने का नाम है जी, मोर नहीं, ये मेरा अभी लेटेस्ट फेवरेट गाना बन गया है। इट्स बाय दिलजीत दोसांझ एंड वन मैसेज फॉर हिम, मिलदे आ जल्दी, मिलदे आ जल्दी बाय अनम हयात टू चतुराजू सिकंदर। ऑलराइट, मोर नहीं बाय दिलजीत दोसांझ, एंजॉय द सॉन्ग।

0: n'owulira ka audio kano. Bye bye. I love you so much.
1: Assalamu alaikum. कैसे हैं लोग सब ठीक हैं हाँ आप ठीक हैं ना अपना ध्यान रखिए
2: वसीम हम अम्मी हैं हम ठीक हैं तो अपना ध्यान रखेगा अपना ठीक रहेगा खाने पीने में ध्यान देगा कोई चीज़ का टेंशन नहीं लेगा बेटा हम लोग सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह हाँ अपना आप घर का पेपर ऊपर सब बन गया है हम लोग कोई ठीक नहीं है कोई भी दिन जा सके ये महीना में हम लोग चल जाएंगे इंशाल्लाह हाँ तो अपना ध्यान रखेगा कोई चीज़ का तो टेंशन नहीं लेगा बेटा हम लोग सब ठीक है हाँ
1: बस अपना आप ध्यान रखिए वहाँ और वहाँ से जैसे छोड़े अपना चले आइए ठीक है यहाँ सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है